अस गोविंदास तुआर राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तो मन मेरे दो सब सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गलां सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा सिफसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जिन इच्छा सा पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जे दिया वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पं शब्दी कर सुभागे कार सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारी आ पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारे आ तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागीओ सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल वे तिन वस्तु पइयो सतसंतो विचारो अमर नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हो अधारो ए वस्त यूं न जाए नितिन राखुर तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कि तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पे ओई तरस पे आ मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया ना

जान जह तै उपजो नानका लीन ताहे मेहमान। काढ़ काढ़ में हर जो बसै संत।

मुगत नर हे मन साची मान पैनासन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम जे बा गुण गोबिंद भजो करन सुनो हर नाम कौ नानक सुन रे।

नानक मन सिमरत है पूर्ण होवे काम। झूठ मान कहाँ करे जग सुपने ज्यो जान, इन मैं कहते रो नहीं नानक के हो बखान। गर्व करत है देह कहो बिन सैशन में मीत, जेह प्राणी अर जस कहो नानक ते जग जीत। जे का

नानक आबे ओट हर गाजो हो सहाय बल होवा बंधन छुटे सब किस होते अपाए नानक सब किस तुम

भावुना विसारे। जय प्रसादो बाग मिलख तना राख पुरोहि प्रभु अपने मना जन थेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सत से त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करे फन बहुदान मन आड़ पैर का तिसका ध्यान।

प्रसादो सुख सहजी बसना, जय प्रसादो हस कर छलै, जय प्रसाद संपूर्ण फलै, जय प्रसाद परम गत पावै, जय प्रसाद सुख सहज समाव है। ऐसा प्रभु त्याग अवरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसादो तुम प्रकट संसार, तिस प्रभु को मूल मनो विसार। जय प्रसाद थिना प्रताप, रे मन मूड तू ताखो जाप। जय प्रसाद थिन खान जपूरे, तिसे छान मन सदा हजूरे।

आप गवाई सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा थे हुए प्रकाश, प्रभु दया थे खमण बगास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया थे मत उत्तम होए। सर्व नदान प्रभु तेरी में हा, आपो किसु न किन्हु लिया, जित जित लावो त लगे हर नाथ। नानक इनकै कछु न हाथ, सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे समुखता होए। सुन मिथो नानक बिन मंता, साजन खी अचर जो कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उजल हो तो, साध संग मल संगली खो तो, साध के संग मिठे अवमान, साध के संग प्रगटे सुखियान, साध के संग बूझे ब्रह्म नेरा, साध संग सब होथन बेरा। साध के संग पहले नाम रतन, साध के संग एक ऊपर यतन, साध की महिमा वरने कौन परानी। नानक साध की शोभा अपना महेश मानी, साध के संग अगोचन मला, साध के संग सदा पुर फुला।

प्रसन्ना सत्संग दुश्मन समीत साधु के संग महाबणीत सत्संग कृष्ण बैरो साधक संग नी का पैरा साधक संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा साधक संग नहीं होता पो साधक संग तजे सब आपा आपे जाने साध बढ़ाही नानक साध प्रभु बन आई साधक संग न कम होता वै साधक संग सदा सुख पावै साधु संग बस गुछन लह साधु के संग अजर सह साधक संग बसे थान ऊंचा साधु के

कृष्णामृत वर्षे ब्रह्म ज्ञानी बंधन थे मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी खी निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी ख्या भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी ख्या ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी ख्या नहीं बनास, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी खै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी खै होय सुपला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदारो, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह वसे प्रभ संगा, ब्रह्म ज्ञानी खै नाम उदारो, ब्रह्म ज्ञानी खै नाम परवारो, ब्रह्म ज्ञानी सदा स जागतो, ब्रह्म ज्ञानी अहमबुद्ध त्यागता, ब्रह्म ज्ञानी खे मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कविता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हो अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी खा निर्मल मानता, ब्रह्म ज्ञानी स करे प्रभ आपो, ब्रह्म ज्ञानी खा बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भाखी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी कहो बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वरो, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वरा।

ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी खां दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने।

राष्ट्रपदी मिथ्या नाही रसना पारसो मन में प्रीतन रंजन दारसो परत्र रूपन पेख नेतरो साधकी टहल संत संग हेता कर्ण सुन काहू की निंदा सबते जन आप सुको मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन ते टर इंद्री जैतो पंच दोखते रहतो नानकोट मदे को ऐसा आपरसा वैसनो सो जस ऊपर सो परसाना बैसन की माया थे हो पहना कर्म करत हो वह नह कर्म तस वैसनु का निर्मल धर्म काहू वल की इच्छा नहीं बादशाह केवल भगत खींत संगराचा मंतन अंतर सिमरन को पालो सब ऊपर होवत कर पाला आप दृढ़ अवरह नाम च पावै नानको वैष्णो परमगत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सत्संग पापा मल खोवै तिस भगवती कीमत उत्तम होवै भगवंत की टहल अखने नथनीता मंतन अर्पै विसन परीतो हर के जन हृदय वसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म सोतै राम नाम सारस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय वसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद प्राण सिमत बूझै।

का। औसत करे अनेक जन अंतन पारा भारो नानक रचना प्रवरची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थ वासी कई कोट बन पर मैं ओदासे कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तो भीषण होते कई कोट आत्म ध्यान तारा है कई कोट कव खां विचार है कई कोट नवथ नाम त्यावै नानक करते खांत न पावै कई कोट भय अवमानी कई कोट अंत अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपगो आत्म न कोर कई कोट पर दर्व कुहर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया सर माहे कई कोट परदेश परमाहे।

पै खारी नीच का साजा। कब हूँ अब कीर्थ में आवा, कब हूँ पला पला कहा मैं। जम प्रभ राख तम ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह।

नानक ताखी निर्मल सोए जब लछाने मुझते कश होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ चौन मैं फिरता जब तारे खो बैरी मी तो तब लो नश नाही चीता जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राज देह सजाए प्रभु कृपा थे बंधन टूटा गौर प्रसाद नानक छूटा सह सह खटे लखो उणतावा त्रितन आवे माया पाछे पावा अणक भोग बिख्या के करै नैत्रवतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै

जैसी दृष्ट करत सा होए आपे आपो आप सोए जो किशकिनो सो अपने रंग सबते दूर सबूख संग बूझे देखे करे बवे काओ आपे एक आपे अनेक मरन बंसे आवे न जाए नानक सतगुरु रहा समा।

का लिखना बाहे साव के सोस का वो करने जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जाप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मले करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रवचीत भगत भगत सुनिया तैलोए जाका हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सच मुकैत साची दे साचा आकार सच वर्ते साचा पसार पार बदन पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच माता सलोका।

सुप्रसन्न अष्टपदी अवनाशी ब्रह्म राख मानो कितु प्रत्याग रिश्ते परे नाही किछ होए सर्व निरंतन एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गबीर गीत सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा ध्यान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक के मन ए अन्नाओ मनसा पूर्ण सन्ना जोग जो कर पाया सो योग हन पन जाका नेत्र फोर जिसका मंथन जाने होर आनंद रूप मंगल सद जाका ए सर्व चोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी तप में तपी स्वर्ग्रस्त में भोगी त्याय त्याय भगता सुख पाया नानक तिस पुरका किने अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाए सगल देव हारे बगाए पिता का जन्म कै जाने पूत सगल परोई अपने सूत समाध ज्ञान ध्यान जंदे जन दास नाम त्यावै से तेह गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊच नीच तिसके

सतकर्णी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जाकर दे प्रवेश सत नित पूजे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिस्तो करने हार अवर न बूझ करत विचारे करते की मित न जाने किया नानक जोत सुभावे सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्माद जिन बुझिया आया स्वाद प्रभ के रंग राच जन रहे गुर के वचन पदार्थ ले ओ दाते दुख काटन हार जाका संग तरह संसार जन का सेवक सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे सलोक आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावनहार आप सत सत सवतारी आपे गुणकारी सत सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जसंता उजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप जिले जिन जमानिया करन करावन तिन मूल पछानिया जाका हृदय विश्वास प्रवयाया तत ज्ञान तस्मह प्रगटाया भय ते निरपो हे बसाना जिसते उपजा तस्मह समाना बस्त मैल बस्त गड़ाई ताको पिन कहना जाई बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक के मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रबलन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे बड़ाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रखे ताकि गतमत कोई न लाखे प्रभु के सेवक को ना पहुँचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी कीरी कलमे राखे भस्म करे लश्कर कोट लाखे जिसका शासन काटत आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन करन बात तिस्ते करबत बिते जाते मारे न राखे अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे।

प्रिया नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस्कस अवर नहीं दिष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जंत पताने मंतन नाम नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम बोलो जस जी बादन रात प्रभ अपने जन कीती दाते।

पहचाने, इसकी महिमा कौन बखानो, इसका गुण का एक ना जानो, आठ पहर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे।

एक आस रखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए। जिस तन को चार कुंठ उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावे।

ना है पादशाह पूता माता की आसीस। निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश ते मां वाका अनुसार दर घर दे प्रीतवान भाई हरप्रीत सिंह। बीबी लवप्रीत कौर विरक परिवार वालों बच्ची प्रिया कौर विरक दे 21वें जन्मदिन नूं मुख रखदे आप जी का कोटान कोट शुकराना धन्नवाद करदे आं। परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए पातशाह। इसे तरह भाई बलबीर सिंह बीबी कुलदीप कौर टिवाणा परिवार वालों अपनी पोती, भाई पवनदीप सिंह बीबी संदीप कौर टिवाणा परिवार वालों अपनी बच्ची बच्ची अवनीत कौर टिवाणा के 16वें जन्मदिन को मुख रखते हैं, अते काका प्रभ करन सिंह टिवाणा की सुख शांति दे रोगता चढ़दी कला को मुख रखते हैं। परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए पातशाह जीओ। भाई जसबीर सिंह बीबी लखबीर कौर गरेवाल परिवार वालों अपनी पोती, भाई जसकरण सिंह बीबी आजी कौर गरेवाल परिवार वालों अपनी बेटी बच्ची इलाही कौर गरेवाल के जन्म की खुशी को मुख रखद शुकराना करते हैं। परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी की सेवा करवाई गई पातशाह जीओ। सेवक परिवार भाई बलबीर सिंह बीबी बलबीर कौर बैंस परिवार वालों, काका सुखराज सिंह बैंस के आनंद कार्ज की सफलता की याचना करदे हैं, काका प्रभजोत सिंह की चढ़दी कला की अरदास करदे हैं पातशाह जीओ। परिवार ने श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए। इसे तरह भाई चूड़ सिंह बीबी तरसेम कौर मान परिवार वालों अपने पोते, भाई दुसांदा सिंह बीबी तरसेम कौर परिवार वालों अपने दोते, भाई सुखदेव सिंह बीबी संदीप कौर मान परिवार वालों अपने बेटे काका गैविन सिंह मान के 21वें जन्मदिन को मुख रखद शुकराना करदे हैं। परिवार वालों श्री सुखमणी साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए पातशाह जीओ। आप जी की महान कृपा बख्शिश रहमत हुई आपने तरस किया पातशाह जीओ। श्री सुखमणी साहब जी के पाठ की निर्विघनता सहित संपूर्णता उपरंत आनंद साहब 6 पौड़ियों की अरदास इन्ने अरसे दे विच आप जी के बच्चों पासों बाणी पढ़दे सुनदे सेवा करदे हुई बेअंत भुलां चुकां की खिमा अगांह तो समत बख्शिश करनी, समूह सेवक परिवारां दे सिर ते बच्चियां दे सिर ते मेहरा भरिया हथ रखना, दुखां कलेशां दरिद्रां विघनां दे नाल सुखां दे प्रकाश चढ़दियां कला बख्शिश करनियां, समूह संगत दी कीती हुई अरदास बेनती दर ते प्रवान करनी, कदम कदम लेखे विच लाउणा आप जी दीआं बख्शियां दातां दे विचों तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां, दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दी दात दे के नवाजना, मनोकामनावां शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, देसा प्रदेशां विच विचरदिआं बच्चिआं दे सिर ते मेहरां भरिआ हथ रखणा, माता पिता दे आग्याकार उच्च विद्या दी दात नेक मार्ग उत्ते चलण दी प्रेरणा बख्शिश करनी, सेवकां दे रंभे कार जाप जी ने आप रास करने काम क्रोध लोभ मोह हंकार तों बचा के सत संतोख दया धर्म धीरज दीआं दातां बाणी बाणे नाल गुरु घर दे नाल प्रेम प्यार बख्शिश करना इन्हां समिआं नूं मुख रखदिआं परिवारां वल्लों आप जी ने सुंदर पोशाके भेट किए गए, आप जी ने अंगीकार किए हैं पवित्र हजूरी अंदर कड़ा प्रसाद की देग हाजिर है दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शिश करनी, कृपा करो पावन हुक्म दी दात बख्श के असीस आशीर्वाद बख्श के निहाल करो, अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, सरबादे कारज राज करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की तबह चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो,

प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी प्रभ की अकथ कहानी जन

ब्रह्म बिंदै तिसदा ब्रह्म तर है, एक शब्द लिवलाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिर है। जो हर हृदय सदा बसाए बिन सतगुरु नाम न पाई, बुझो कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले, सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है, मन मुख तृष्णा भुख न जाए, गुरमुख शब्द रतिया शीतल हो आप गवाए। अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुख न लगे आए, नानक जे गुरमुख करह सो प्रवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हों बरहारी तिन को जो गुरमुख सिखा, जो हर नाम त्याही दे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रफा, हर जस मन लिखा, हर नाम सलाही रंग स्यो सब किल बिख क्रिखा। धन तन सुहावा शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। हर नाम सलाही रंग स्यों सब किल बिख क्रिखा। धन तन सुहावा सो शरीर थान है, जिथे मेरा गुर धरे विखा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ ਅਠਾਰਹਿ ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।

ब्रह्म हिरिया जो जो तरियो पुरातन नवतन भगत पाए हर सेव भगत पाए हर देवा नानक बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा।

बंधन तोर राम निवलाई संत संग बनियाई जन पदार्थ प्यो पनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावे आठ पहर गोविंद गुण गावे जन नानक साध बल जावे सारग महला पंजमा जीवन तो गुनी है जीवन तो गुनी है हर पेखा

हाव बलबंत करै न जाने लाभे, बलबंत करे न जाने लाभे, सो धुरत नहीं मूड़ा। स्वार्थ त्याग असार्थ रचियो, न सिमरे प्रभ रूड़ा। सोई चतर सियाणा पंडित, सो सूरा प्रधाना।

पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाउ संचन राम नाम धन तरणा।

प्रेम भक्त गुण गावत कीतै, पोहत नाही संसार रहाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी, ए साध को अचार, चरण कमल चरण कमल, अस्थित हृदय अंतर, पूजा प्राण को आधार।

सिमरत नाम स्वामी रहा, साजन मीत सखा हर मेरा, गुण गोपाल हर राया, बिसना जाय निवख हृदय ते, पूरे गुरु मिलाया।

जाकै राम को बल होए, सगल पदार्थ पूर्णता हो को दुख न व्यापे कोय रहाउ। जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए,

बिन प्रसेव करते अनसेपा बिरथा काटे काल। जब जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो को नहबाल। राख लिहो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नानक प्रभ मेरा सार संग तन माल। सारक महला पंजमा मन तन राम क्यों बिहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदै पोहत न संसार रहाओ। सबनी कीर्तन सिमर स्वामी ए साधको आचार। चरण कमल अस्थित हृदय अंतर पूजा प्राण को आधार। प्रभ दीन दयाल सुनो बिन बिनती प्रभ।

बहु जोरी टूटत बार न लाके ताको जो काकर जल फोरी कर कृपा भगत रस दीचै मन खचत प्रेम रस खोरी नानक दास तेरी शरणाई प्रभ बिन न होरी सारग महला पंजमा चितवो वाव सर मन माय हुए एकत्र मिलो संत साजन गुण को बिनत गाय रहा बिन हर भजन जिते काम करिया है तेते बिरथे जाय पूर्ण परमानंद मन मीठो तिस बिन दूसर नाय जप तप संजम कर्म सुख साधन तुरना कछु ऐ लाहे चरण कमल नानक मन बिद्यो चरणे संग समाए।

तन धन तन मन धन सबे तुमरा स्वामी अन दूजी जाय जो तू राखे तिवही रहना तुमरा पैने खाए साध संगत के बरबर जाई बोहन जन्म ताई नानक दास तेरी सरनाई जो पावे तिवे चलाए सारग महला पंजमा मन रे नाम को सुख सार आन काम विसार माया सगल दिसे शारहा ग्रह अंधकूप पतत प्राणी

कर जुड़ नानक दान मांगे साध संग उदार सारग महला पंजवां विराजत राम को प्रताप आद प्याद उपास सब नासे बिनसै तीने ताप रहा।

जाय। राख रहो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ यज्ञ पार। नानक दास तेरी सरनाई पवजर उतरियो पार। सारक महला पनमा रमन को राम के खुणबाद। सार संग त्याये परमेसर अमृत जाके स्वाद रहाव। सिमरत एक चतपनासी बिनसे माया माद। सहज नंद अनहद तुन पाणी बोरना पहे बिखाद। सनकादक ब्रह्मादक कावत गाव सुख पहलाद।

आय अनक संजाय कण तन आपे गर्भे गर्भ परमाय से तनवंते से पतवंते हर की शरण समाय गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बोल न आपे जाय सारक महला पनमा हर काटी कुटरता कुठार ब्राह्मण दहन भय खिन पीतर राम नाम प्रहार हाव काम क्रोध निंदा प्रहरिया काढ़े साधु के संगमार मार

सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी गर्म लंगाए पार, कोलो चरखा चकी चक थल बारोले बहुत अनंत लाटू लाटू मदानियान गा।

बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

साहब जी, धन वाहिगुरु साहब जी। दर्शन प्यासी दिन सरात, चेतवाओं आन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया, नानक हर संग मीत। धन वाहिगुरु साहिब जी।

तेन दर्शन पिखा सोन कीर्तन हर गुण रवा हार जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग स्यों

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास, राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की

एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की

खून कढ के दिखाया गुरु साहब ने ओदे पूड़िया दे विचों उधरो दुध सिमया हक दी रोटी दे विचों ओहो फिर चरनी टह गया मलक भागो भी गुरु साहब का श्रद्धालु बन गया। इन्ना कुछ कहिंदे खिमां दे जा चुके गुरु साहब के इतिहास उच्चे ते सुचे गोलदियां तो गलतियां होई जांदियां गुरु साहब ते गुरु की संगत बख्शन योग है। अणजाण बच्चे समझ के खिमा करो बेंत संगतां ने माया रूपी शीस बख्शी है। गुरु साहब सब नूं चढ़दी कलाकार परिवारां में सुख शांति बख्शन करना। आओ हुण साडियां सत्कारयोग बीबियां वल्लों उन्होंने शब्द कीर्तन द्वारा आप गुरु संगत ने सेवा करनी उन्हों का हुण समा है। सानू जो समा बख्शिश करे उसकी समाप्ति है। बुलाओ फतेह आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा।